में ज़रूरी है। इंसान जब तक डरेगा नहीं हदीस की रूह से वो चलेगा नहीं, और जब तक चलेगा नहीं बंदा दौड़ेगा नहीं, जब तक दौड़ेगा नहीं पहुँचेगा नहीं, जब तक पहुँचेगा नहीं उसे मिलेगा नहीं। दर हकीकत तकवा इंसान को जगाता है, तकवा इंसान को बेदार करता है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिलाता है तकवा कि अल्लाह ने तुमसे कुछ चाहा है, अल्लाह ने कुछ तुमसे मांगा है। अपने प्रोटेक्शन का, अपनी कामयाबी का और अपनी हिफाजत का इंसान को ख्याल करना चाहिए। हम दूसरों के लिए एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, इस ज़िंदगी में हम जिस चीज़ को भूल जाते हैं वो अपना आप है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, अपना ख्याल करना बंदा भूल जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा के ज़रिए से और दूसरी आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें याद दिलाया कि तुम भी ज़िम्मेदार हो, तुम अपने बारे में सोचो। अलैकुम अनफुसकुम, अनफुसकुम तुम्हारी भी ज़िम्मेदारी है, तुम अपने बारे में सोचो। यकू अनफुसकुम अपनी हिफाजत का ख्याल करो, ख़ुद को ना भूल जाना इस दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया के गिरोदार में, उलझनों में ख़ुद को ना भुला देना। तो तकवा दर हकीकत ख़ुद को याद करना और ख़ुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद करना है। वलवरा फ़ी दीनकुम और ये ख्याल रहे कि अपने दीन में, अपने रिलीजन में कोई परेशानी आने ना पाए, कोई शुभा ना आने पाए। दीन को भी बचाओ, ख़ुद को बचाओ और अपने दीन को बचाओ। किसी बुज़ुर्ग स्कॉलर ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया है कि इंसान की ज़िंदगी को दो चीज़ें बर्बाद कर देती हैं, एक शहवात और दूसरे शुभहात। एक अलग टॉपिक बन सकता है, इंसान की ज़िंदगी को दो चीज़ें ख़त्म कर सकती हैं, एक शहवात और दूसरे शुभहात। शहवात से बचने के लिए तकवा ज़रूरी है, शुभहात से बचने के लिए वरा ज़रूरी है। वरा दर हकीकत इंसान अपने आप को, अपने दीन को शुभहात से, डाउट से, अपने आप को कन्फ्यूजन से बचाता चला जाए। जितना बचाता चला जाएगा उतना ही इंसान इस दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। तो जहाँ पर इमाम ने फरमाया तकवा इलाही इख्तियार करो और वरा अपने दीन में इख्तियार करो, अपने आप को शहवात से, शुभहात से बचाते चले जाओ, वहीं पर इमाम ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हमारे लिए दिए हैं किस तरह इंसान इस रास्ते पर आ सकता है, किस तरह इंसान इस रास्ते पर चल सकता है। इमाम फरमाते हैं कोशिश करो, वल इजतहाद लिल्लाह, बग़ैर कोशिश के, बग़ैर तलाश के इंसान कहीं भी नहीं पहुंच सकता। ना दुनिया में कामयाब हो सकता है, ना अपने तिजारत में कामयाब हो सकता है, और ना तकवा इलाही में कामयाब होता है। तकवा आसमान से टपकने वाली चीज़ का नाम नहीं है, वरा किसी मॉल में मिलने वाली चीज़ का नाम नहीं है। इमाम ने फौरन फरमाया बग़ैर कोशिश के इंसान को कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। कोशिश भी करे तो अल्लाह के लिए कोशिश करे। वल इजतहाद लिल्लाह यानी मुसलसल बंदा कोशिश करे अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए का मतलब सिंसियर हो अपनी कोशिश में, तो हमारी तरफ से एक कोशिश होगी। अगर हम सिंसियर हों तो उसकी तरफ से अताओं का दरवाज़ा, इनायतों का दरवाज़ा खुल जाएगा। हमेशा हम हैं और हमारी कोशिशें कामयाब हो जाएंगे ज़रूरी नहीं है। हम, हमारी कोशिश और उसके बाद उसकी अता है। जब तक उसकी अता ना हो बंदा दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। करबला वाले कामयाब हो गए, करबला के असहाब कामयाब हो गए, तो रातों रात कामयाब हो गए या उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने तलाश की है, मुलाकात की है इमाम से, इमाम के साथ चले हैं, इमाम के साथ जो प्रॉमिस की है उसे फुलफ़िल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनायतों के दरवाज़े उनके लिए खोल दिए हैं। उन्होंने कोशिश की है, अगर कोशिश ना करते कूफे वालों की तरह कूफे में रह जाते, मिस्र वालों की तरह मिस्र में रह जाते, मदीने वालों की तरह मदीने में रह जाते, तो कभी वो कामयाब नहीं होते जैसे अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। वल इजतहाद लिल्लाह बहुत ज़रूरी है तकवा तक पहुँचने के लिए। वल इजतहाद लिल्लाह अल्लाह की राह में कोशिश बहुत ज़रूरी है अपने दीन को बचाने के लिए। और चौथी चीज़ इमाम फरमाते हैं वो सिद्क़िल हदीस, तकवा तक पहुँचना हो तो अपनी ज़बान को सच्ची बनाओ, सच बोलना सीखें, सच्ची ज़िंदगी गुजारना सीखें और एक माहौल सच्चाई का बनाना सीखें। जब तक माहौल सच्चा ना हो, सच्चाई का माहौल ना हो, एनवायरनमेंट सच्चाई का ना हो, ट्रुथफुलनेस का ना हो, उस वक्त तक इंसान की ज़िंदगी कामयाब नहीं होती। यह वो नुस्खा है, इमाम ने वसीयत में फरमाया अगर हकीकी शिया बनना चाहते हो, शिया सोसाइटी बनाना चाहते हो, तकवा के साथ कोशिश, कोशिश के साथ अपनी

अगर मोहब्बत है कौम में तो वो कौम बाकी रहेगी, सोसाइटी बाकी रहती है। उसे कैसे हासिल किया जाए, इमाम ने स्टेप्स को बताया। एक, नमाजों में शरीक हो जाओ, बीमारों की आयादत करो, जनाजों में शरीक हुआ करो, उनके हुकूक को अदा करो। इत्तकुल्ला, तक्वा इलाही इख्तियार करो, इसमें भी अल्लाह याद रहे, मफाद नहीं, इसमें भी अल्लाह याद रहे, अपना फ़ायदा नहीं। मैं एक बीमार को देखूंगा तो वो बीमार उसके रिश्तेदार मुझे देखने आएंगे, नहीं, हम वहीं पर छोटा कटोरा भेजते हैं जहाँ बड़ा कटोरा आने की उम्मीद होती है। इमाम फरमाते नहीं, तक्वा इलाही इख्तियार करो, तक्वा इलाही इख्तियार करोगे तो तुम्हारा ये अमल भी मोहब्बत पैदा करेगा। तो फौरन इमाम फरमाते हैं

बात आती है तो इमाम फरमाते काम करते चले जाओगे तो तुम हमारे लिए जीनत का सबब बनोगे, हमारी बदनामी का सबब नहीं बनोगे। अल्लाह अकबर। नहीं, मैं रट के आया हूँ, आज थोड़ा सुन लीजिएगा जी, याद करके आया हूँ। इमाम फरमाते ये काम करते चले जाओगे इनफरादी जिंदगी में, इंडिविजुअल लाइफ में, सोशल लाइफ में, तुम हमारे जीनत का सबब बनोगे। कोनो ज़ैनन लना, हमारी जीनत का सबब बनो, हमारे लिए बदनामी का सबब ना बनो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा शिया ये काम ना करे तो अटैक शिया पर नहीं होता है, अटैक शिया के थॉट्स पर होता है, शिया के रिलीजन पर होता है, शिया के मकतब पर होता है, उनकी सोच पर अटैक होता है। ये कैसे शिया है, ये नहीं कहे कैसा फर्द है, कहते हैं ये कैसा शिया है, क्योंकि अटैक शिया पर होता है, शिया की थॉट पर होता है। अपने मकतब को बाकी रखने की कोशिश करो, अपने थॉट्स को बचाने की कोशिश करो, इसलिए कि शिया से बेहतर दुनिया में कोई रिलीजन है ही नहीं। मोहब्बत की बात करते हैं तो हम, सुकून की बात करते हैं तो हम, इत्तेहाद की बात करते हैं तो हम, इत्तेफाक की बात करते हैं तो हम, दोस्ती की बात करते हैं तो हम, नजात की बात करते हैं तो हम, अदालत की अगर कोई बात करता है मजहब तो वह शिया मजहब है। शिया मजहब से दुनिया में कोई बेहतर नहीं, इस मजहब को हाथ से जाने ना देना। इमाम ने फरमाया जीनत का सबब बनो, हमारी बदनामी का सबब ना बनो। और बाद इमाम फरमाते हैं छठी और सातवीं चीज, सात चीजें भी सोशल लाइफ के लिए हैं। इमाम फरमाते हैं जहां भी, पूरी तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, और मेरी तकरीर यहां से शुरू होती है, जहां भी नेकी देखो, जहां भी अच्छाई देखो, जहां भी तरक्की देखो, जहां भी खैर देखो, समझ जाना वो अहले बैत से है। या अल्लाह, जहां भी नेकी देखो, जहां भी सच्चाई देखो, जहां भी अच्छाई देखो, समझ जाना वहां अहले बैत हैं और वो अहले बैत से है, इसलिए उसका ताल्लुक अहले बैत से है। खैर निकलता है तो अहले बैत से, खैर आगे बढ़ता है तो अहले बैत से, खैर बचता है तो अहले बैत से। जुर्रु इलैना कुल्ल मवद्दा, जहां भी नेकी देखो उसे खींच कर ले आओ तो वो अहले बैत से मिलेगा। अहले बैत का नतीजा है, अहले बैत के काम का नतीजा, अहले बैत के नाम का नतीजा, अहले बैत के कलाम का नतीजा, अहले बैत के हदीस का नतीजा वो नेकी है। वो नेकियां उस घर से चली हैं, वो नेकियां उनकी जात से चली हैं। जहां भी ऐब देखो, जहां भी बुराई देखो, जहां भी खता देखो, वो हमसे नहीं है, वो हमसे नहीं है। चाहे सोसाइटी में हो या फर्द में हो, कहीं भी कोई ऐब नजर आए, समझ जाओ वो अहले बैत से नहीं है, वो हमारी खताओं का नतीजा है, वो हमारी बुराइयों का नतीजा है। नहीं, इमाम फरमाते हैं जहां भी नेकी देखो वो हमसे, और नेकी फैलेगी अहले बैत के नाम से। काश, इसी हदीस के नतीजे में दूसरे हदीस में आपकी खिदमत में पेश कर दूं, इमाम फरमाते हैं काश काश हमारा पैगाम दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंच जाता तो दुनिया के गोशे गोशे में रहने वाले लोग हमारे पैरोकार बन जाते। लौलेमु महासिना कलामेना लत्तबाउना, हमारे जो लोग काम करते हैं सोशल मीडिया में, काम करते हैं टिकटॉक में, काम करते हैं वेबसाइट्स बनाते हैं, गूगल पे काम करते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है आज के ज़माने में। नहीं, ये चीज़ें आबाद के लिए, आबाद करने के लिए भी, बर्बाद करने के लिए भी हैं। किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, पहले हम लोग कारवान में जाते थे तो शहर के बाहर लुटते थे, आज टिकटॉक हमारे कमरे में आ गया तो शहर के अंदर, घर के अंदर लुट रहे हैं। हमें लूट लिया जा रहा है, हमारा अखलाक लुट रहा है, हमारा किरदार लुट रहा है, हमारी तहजीब हमसे छिनती चली जा रही है। पहले बाहर लुटते थे, अब अंदर लुट रहे। तो पहले अगर बाहर आबाद होते थे और इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करे बंदा अपने आप को आबाद करने के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, इसे पॉजिटिव रास्ते में इंसान इस्तेमाल कर सकता है। नहीं तो बताते हैं इमाम, लौ उलेमु महासिना कलामेना, अगर हमारी बातों के हुस्न का लोगों को पता चल जाए तो वो हमारी जरूर पैरवी करेंगे। अगर दुनिया अहले बैत से दूर है तो उसमें हमारा भी कोई कसूर है, कभी कभी मानना पड़ता है, हिम्मत के साथ एक्सेप्ट करें, हमने वो उस तरह से पैगाम अहले बैत का नहीं पहुंचाया जिस तरह से पैगाम पहुंचाने का हक था। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी तौफीक दे। इस तौफीक के लिए सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। नतीजा पहुंचा दूं आपकी खिदमत में, नतीजा ये है, एक इंडिविजुअल लाइफ और एक मेरी सोशल लाइफ, इन दोनों को जमा किया इमाम ने। दोनों को जमा करने के बाद फरमाया तीसरा स्टेप जाने के बाद, पहले
इमाम फरमाते हैं अगर

सब मिलके सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद इमाम फरमाते क्यों सलवात पढ़ा करें, कसरत से इमाम फरमाते हर सवा सलवात के बदले में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 10 नेकियां अता करेगा, 10 नेकियां अता करेगा। अगर आमतौर पर हम सलवात जो पढ़ते हैं वाकई तवज्जो के साथ पढ़ते चले जाएं, अजान के वक्त, अजान से पहले, अजान के वक्त, अजान के बाद, इकामत से पहले, इकामत के दरमियान, इकामत के बाद, नमाज में, रुकू में, सजदे में, नमाज के बाद जितनी हम सलवातें पढ़ते हैं अगर तवज्जो के साथ उन्हें पढ़ते चले जाएं, गिनते चले जाएं, यकीन मानिए सवाब से हमारा दामन भरता चला जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को कमाल अता करते, पढ़ते करते चले जाओ, दुरूद पढ़ते चले जाओ, हर दुरूद के बदले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 10 नेकियां अता करेगा। ये 10 नेकियां इसलिए कि हर नेकी के बदले 10 है, ये मिनिमम है। इसके बाद जो नेकियां का सवाब मिलता चला जाएगा इंसान उसे काउंट नहीं कर सकता। कम से कम फ़ायदा सलावात का ये कि इंसान गीबत से बच जाएगा, इंसान तोहमतों से बच जाएगा, इंसान अपने आप को झूठ से बचा लेगा, उसकी ज़बान पर अगर अल्लाह का जिक्र हो और पैगंबर इस्लाम पर दुरूद हो और उनके आल पर दुरूद पाक हो। ये इमाम की वसीयत है, मुकम्मल वसीयत इनफरादी ज़िंदगी के लिए, समाजी ज़िंदगी के लिए और विलाई और मौलाई ज़िंदगी के लिए। और क्या चाहिए हमें? इमाम की ज़ात से हमें सबसे बड़ा तोहफ़ा आज की शब ये लेना है कि इमाम की वसीयत पर अमल करने की कोशिश करें। आप मेरा हाथ बटाएं, मैं आपका हाथ बटाऊंगा। अब एक दूसरे का हाथ बटाएं, फैमिलीज में इस वसीयत नामे इमाम को दोहराएं, रिपीट करें ताकि हमारा घर शिया घर कहलाए, हमारी ज़ात शिया ज़ात कहलाए, हमारी ज़िंदगी शिया वाली ज़िंदगी कहलाए और हमारा घर भी शिया घर कहलाए। और इससे बढ़कर एक जुमला कह दूँ, सब अमल करते चले जाएँगे तो हमारी सोसाइटी भी शिया सोसाइटी में बदल जाएगी। एक वसीयत नामे पर अमल कर ले बंदा, उसकी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। उसके बाद आखिरी जुमला इमाम का, ये जो वसीयत नामा जिस जिस तक पहुंचे उसको मेरा सलाम। अल्लाह अकबर। ये मेरा वसीयत नामा जिस जिस तक पहुंचे उसको किसका सलाम? उसको इमाम याजदहम का सलाम, उसे 11वें इमाम का सलाम। आज जो हम सलाम करते हैं इमाम को, हम सलाम की इब्तिदा नहीं करते, इमाम के उस सलाम का जवाब देते हैं। मौला आपने हमें याद किया, मौला आपने हम तक सलाम पहुंचाया, अहले बैत ने हमें कभी नहीं भुलाया है। हदीसे किसा में कमाल के मौके पर अहले बैत ने कहा, मौलाए कायनात ने कहा, या रसूल अल्लाह क्यों जमा हुए हैं? जब तक शियों का जिक्र नहीं आ गया हदीसे किसा कम्प्लीट नहीं हो पाई। करबला के दश्त में हुसैन ने गम के मौके पर, जहाँ पर अक्सर लोग खुद को भुला देते हैं, वहाँ पर हुसैन ने अपने चाहने वालों को याद किया, बेटा मदीना जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना उनसे शियती महमा शरीब तुम मा आद बिन फज कुरूनी। मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना, हुसैन मदलूम की प्यास को याद करना। हुसैन ने हमें याद किया, हमें सलाम सुनाया और अपनी तशनगी का ऐलान किया। वो मुसीबतें बयान की हुसैन ने जिन मुसीबतों में गम भरा था, जिन मुसीबतों में दर्द भरा था। याद रखना तशनगी जब भी का ख्याल हो हुसैन की प्यास को याद करना। पता है 11वें इमाम को जब जहर दिया गया इमाम की ज़िंदगी में, वो जहर इमाम के बदन में आहिस्ता आहिस्ता असर करने लगा। कहा जाता है एक रबीउल अव्वल को जहर दिया गया, 4 या 5 रबीउल अव्वल की जब तारीख आते आते इमाम के पैरों में ताकत नहीं थी कि इमाम खड़े होकर नमाज पढ़े, इमाम बैठ कर नमाज पढ़ते थे। और जहर का असर बदन में बढ़ता गया तो इमाम की प्यास भी बढ़ती गई, इमाम की तशनगी भी बढ़ती गई। आखिरी लम्हात थे, इमाम के बयान किया जाता है इमाम के बदन में लर्जा आ चुका था, इमाम के हाथ कांप रहे थे। अपने ग़ुलाम से कहा पानी पिला देना, अकीद नामी ग़ुलाम पानी का प्याला हाथ में लेकर आगे बढ़ा। इमाम ने हाथ में प्याले को लिया, प्याला ज़मीन पर गिर गया, इमाम के हाथों में लर्जिश आ चुकी थी। इमाम ने फौरन कहा मेरे बेटे को बुलाना, अकीद वो दूसरे कमरे में मौजूद हैं। अकीद कहता मैं पहुंचा उस कमरे में, क्या देखा इमाम नमाज में मशगूल थे, मैंने आवाज़ दी मौला

खुदा के लफ्जों से कुछ नमी लेकर हम आज रात मुसल्ला बिछा के रोएंगे, हम आज रात मुसल्ला बिछा के रोएंगे।

अब आ भी जाओ कि रहबर हमारा तन्हा है, फिर इस ख्याल से अशकों का बंद टूटा है। तुम्हारी गोद में चेहरा छुपा के रोएंगे, तुम्हारे गैब का पर्दा हिला के रोएंगे। यतीम देते हैं आवाज हाज कासिम को, जमीने कुछ पे उड़ती है खाक, आ जाओ। चराग उजड़े घरों में जला के रोएंगे, खुदा के सामने हम गिड़गिड़ा के रोएंगे।

नहीं, अलबत्ता इमोशनल भी है, इसमें एहसासात भी है, लेकिन एक दीन का मसला है, हक को बातिल का मसला है। अगर हक के बीबी फातिमा वाजे ना किया जाए तो दीन में इनहराफ आ जाएगा, हक और हक का जो रास्ता है वो खत्म हो जाएगा। ये बस एक जज्बाती मसला नहीं है। तो आज यकीनन जो रात है वो बीबी की खुशी की रात है, लेकिन इंसान और हम खुश होते हैं, मुमकिन है बाज़ जगहों पे शेर शायरी होती है, अलबत्ता उस दायरे में रहकर इंसान करे जो शरीयत ने कहा है, जो उलमाए करा मराजे ने ताकीद की है, तो इंसान खुश हो इसमें कोई। लेकिन इस तवल्ला और तबर्रा का एक गहरा माना और मीनिंग भी है, और कभी कभी इंसान इन चीज़ों की तरफ, एक तवल्ला तबर्रा का माना है कि जब कोई गम की बात हो इंसान आंसू बहाए, खुशी की बात हो तो इंसान खुश हो। लेकिन इंसान अपने आप से सवाल पूछे कि मैं बीबी फातिमा की शान में चंद अशआर पढूं, इससे बीबी ज्यादा खुश होगी कि मेरा किरदार बीबी जैसा बन जाए उसमें ज्यादा खुश होगी? सोचने लायक बात है ना। यकीनन पहले उसमें बीबी खुश होगी कि मैंने चंद अशआर उनकी शान में पढ़े, अहले बैत की शान में पढ़े, वो खुशी का बायस है। लेकिन किसमें ज्यादा खुशी है? इंसान सोचे कि मेरा किरदार, मेरी रफ्तार, मेरा बोलने का अंदाज उन जैसे हो। तो यही वो हकीकी माना है तवल्ला और तबर्रा का, कि जो हमारी रिवायात में जिक्र हुआ है। मैं दो जुमले आपके सामने ज़ियारत अमीनुल्लाह के पढ़ना चाहूँगा। बड़ी अजीब ये ज़ियारत है, बड़ी बुलंद ज़ियारत है। ये ज़ियारत अमीनुल्लाह ज़ियारत जामिया है, यानी अब तमाम अइमे मासूमीन के लिए इसे पढ़ा जा सकता है। और इस ज़ियारत में अजीब बात यह है कि पूरी ज़ियारत में तीन चार जुमले ज़ियारत के, बाकी ज़ियारत पूरी दुआ है। यही है ना, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्दे व हुज्जतहु अला इबादे। चंद फकरे है ज़ियारत के, उसके बाद तब्दील हो जाती है ज़ियारत दुआ में, अल्लाहुम्मा फज्अल नफ्सी मुतमइन्नतन बिकदरे। ये दुआ है, ये ज़ियारत और दुआ का रब्त है यहाँ पर। इस ज़ियारत में हम जो जुमला है ये है कि अल्लाहुम्मा फज्अल नफ्सी, ए खुदा मेरे नफ्स को इस तरह करार दे, मुस्तन्नतन बि सुनन औलियाए, मेरे नफ्स को इस तरह करार दे कि जो अहले बैत की और जो औलिया इलाही की सीरत है, सुन्नत है, वो मेरी जात में आ जाए, मैं उनके सुन्नत पर चल सकूं, उनके सुन्नत को अपनी जिंदगी में लेकर आ सकूं। ये तवल्ला का हकीकी माना है कि हकीकी तवल्ला उस वक्त होगा कि इंसान उनकी सीरत पर चले, वह मुफारकतन ले अखलाकी आदाएक। और तबर्रा का हकीकी माना, गहरा मीनिंग, डीपर मीनिंग ये है कि इंसान जो दुश्मनान अहले बैत है उनके अखलाक से अपने आप को दूर रखे, जो अखलाक है दुश्मनान है। यानी यकीनन मैं आप मोमिनीन से नहीं कहता, इंसान खुद अपने बारे में सोचे कि कयामत के दिन इंसान जाए, दिल में मोहब्बत बीबी फातिमा हो, लेकिन किरदार देखा जाए तो जो दुश्मना ने बीबी फातिमा उनसे मेल खा रहा है, तो बड़ी शर्मंदगी का इंसान के लिए मकाम होगा। तो जो हकीकी तवल्ला है, तबर्रा है, वो अमल में इंसान दिखाई दे। जाहिरी तवल्ला तबर्रा भी इंसान के पास हो, लेकिन कोशिश करे कि वो अपनी जिंदगी में, अपनी सीरत में इसे इख्तियार करें। हम सब जानते हैं कि ये अय्याम भी शुरुआत शादी, माशाल्लाह शादियों के अय्याम वगैरह है, तो उसमें इस हवाले से भी के जो अइमे मासूमीन की, मखसूसन बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत थी, घर व घरेलू मामलों के बारे में आज हम काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, घरेलू रवाबेत और मसाइल। इंसान कोशिश करे कि उनकी सीरत को, उनकी सुन्नत को पहचाने और उस पर अमल करें। बस मैं एक नुक्ता बयान कर लूँ, वो ये है कि जोजा बीवी और शोहर, हस्बैंड एंड वाइफ में एहतराम होना चाहिए। एक तो मोहब्बत का रबता है, लेकिन साथ साथ इंसान ऑनर करे, रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे के एहतराम का खास ख्याल रखे। अब देखे कि जैसे एक दूसरे से बीवी फातिमा और अमीरुल मोमिनीन एक दूसरे को मुखातब होकर, मसलन बीवी फातिमा गालिबन कहती थी कि या अमीरुल मोमिनीन, नाम से नहीं, अबुल हसन भी पुकारती थी बीबी, लेकिन या अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन खास एहतराम दिखाते, कहते कि या बिन्त रसूलिल्लाह, यानी अबलता फातिमा भी कहते जोजा थी, लेकिन गालिबन ये होता था कि या बिन्त रसूलिल्लाह, कि आपका जो निस्बत है रसूलल्लाह से उसका मैं एहतराम करता हूँ। तो इंशाल्लाह ये हम कोशिश करें कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। बस आखिरी चंद जुमले, क्योंकि आज की रात मंसूब है हमारे वक्त के इमाम, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से, और यकीनन हम ऐसे दौर में ज़िंदगी कर रहे हैं कि मौला के चाहने वाले, अहले बैत के चाहने वाले, आप देखें फरावान तादाद में,

ये तो रहा। और आखिरी दो शेर आपकी खूबसूरत समाधों के अंदर करते हुए, ये फूल ये अबशार ये दरिया ये समंदर, जन्नत हो मलाइक हो या कौसर हो।

है मेहदी, इसमें मैं आप सबको शामिल करता हूँ। मजदूरी में मजदूरी में जीशान को और सबको।

0: पर इरेनियन आर्ट और इरेनियन आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर को मिक्स करके बनाया गया है।
1: जब जंग का नाम आता है तो कुछ लोग सिर्फ भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके बरखिलाफ हक की तरफ गामजन रहते हैं। उन दिनों जब पर्शियन गल्फ में बेचैनी और इज़्तिराब था, कुछ लोग दूसरे शहरों से हत्ता ईरान के बाहर से इस नुक्ते तक पहुंच गए ताकि वो देखें, न सिर्फ देखें बल्कि अपने आप को वहां महसूस कर सकें। मजलिस व मातम बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये एक पनाहगाह होती है, ये एक मरकज होता है, ऐसी जगह जहां लोग उनके साथ खड़े होते हैं, जो महसूस करते हैं कि उनकी किस्मत एक जैसी है।
2: ये कि एज बुजुर्ग तरीन बोंगाई के दानिश जो हर आज बम्बई पे ईरान में बम्बई पे लंदन में फिर रास्ता था, ये कि बुजुर्ग तरीन अल्हम्दुलिल्लाह दर सिने 25 साले अल्हम्दुलिल्लाह खुदा को मार कर दे और मुझे रसीदे बाद از اون तकरीबन 8-9 साल लंदन बुदम तो बाद از اون اومدم اینجا الان ایران هستم تو رسانه کار میکنم کارهای رسانه انجام میدم تو اینستاگرام تو یوتیوب تو فیسبوک و اینا و برای کار کودک بزرگ سال ها اینا انجام میدم خوب سوال این است که چرا من زندگی لندن را ویل کردم و اومدم ایران و اینجا درس بخونم
1: जितना ज़्यादा खबरें आ रही थी बंदर अब्बास की गलियां भी उतनी ही ज़्यादा भर रही थीं। लोग सिर्फ वाकईयत को देखने नहीं आए थे, लोग सिर्फ हकीकत को देखने नहीं आए थे, कुछ लोग सपोर्ट के लिए आए थे, कुछ फ़िक्र के लिए, कुछ सिर्फ ये चाहते थे कि साथ साथ रहें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा था वो खौफ नहीं था, वो वजूद था। ऐसा शहर जो बेचैन भी हो सकता था लेकिन उसने इस्तेकामत दिखाई, वो खड़ा रहा और अपने आप को मंजर से हटाया। कुछ जगह ऐसी ही होती हैं जहां कैमरे को देर से समझ में आता है कि उसे धीमे धीमे चलना चाहिए। गुलजारे शौदा ऐसी ही जगह है। यहां कोई ताजी खबर नहीं ढूंढता, ना कोई एनालिसिस करता है, ना कोई नारा लगाता है। सिर्फ फैमिलीज होती हैं जिन्होंने किसी अपने को खो दिया है और शहर अभी तक कोशिश कर रहा है कि उनकी गैर मौजूदगी के साथ जी सके। सारे नामों के बीच कुछ कहानियाँ जहन में ज़्यादा रह जाती हैं, जैसे मकान आसरी कि उस स्कूल में बम गिरने के बाद इस बच्चे का कोई हिस्सा नहीं मिला सिवाय एक जूते के। इनके वालिदैन अभी भी रोज़ आते हैं तलाश में कि काश मेरे बच्चे के जिस्म का कोई एक हिस्सा मिल जाए। जैसे शहीद बारानी, जिस दिन हम लोग पहुँचे उसी दिन इस बच्चे की यौम विलादत यानी बर्थडे था। मैं ये सोच रहा था कि इनके वालिदैन आज उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जब उन्हें याद आया होगा कि आज मेरे बच्चे की विलादत का दिन है और मेरा बच्चा मेरे बीच में नहीं है। कुछ ऐसे गम होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। गुलजारे शहदा का माहौल इतना सख्त था कि बहुत से लोगों ने सोचा कि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कि नस्ल जो यहाँ पढ़ रही है उसने ईरान इराक जंग नहीं देखी, ना अलार्म की आवाज़ सुनी, ना बंकर की रातें। बहुत से लोगों के लिए जंग सिर्फ एक चीज़ थी जो किताबों में थी, डॉक्यूमेंट्रीज में थी या वालिदैन की कहानियों में। लेकिन इन दिनों पहली बार कुछ चीज़ सिर्फ कहानियाँ नहीं रही, अब धमकियां सिर्फ धमकियां नहीं रहीं। खबरें ज़्यादा हकीकी लगने लगी थीं और लोग अब समझ रहे थे कि क्यों सालों से कुछ नारे इस मुल्क में लगाए जाते हैं।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एक शहीद के घर पे आए हैं, जो मीनाब में बच्चे शहीद हुए हैं उनमें से एक बच्चे के घर पे आए हैं वालिदैन से मिलने के लिए। और ये हमारे अहले सुन्नत बरादरी से है, यहाँ फ़र्क नहीं है शिया सुन्नी का। मीनाब में अहले सुन्नत बच्चे भी थे, उनके वालिदैन से मिलने आए हैं, उनको उनके लिए एक हदिया और एक तोहफ़ा लेके आए हैं और उनके लिए दुआगू हैं। आप भी दुआ कीजिएगा, उनके वालिदैन से बात करते हैं।

0: जंग जंग जंग जंग जंग तब हकीकी हो जाती है जब वो घर तक पहुंच जाती है। उससे पहले तक सब कुछ खबर लगती है, लेकिन यहाँ इस घर में अब कुछ भी खबर जैसा नहीं है। मोहम्मद ताहा उन्हीं नौजवानों में से एक था जिसकी ज़िंदगी आम सी थी। हिंदी फिल्में पसंद करता था, सलमान खान को पसंद करता था, हंसता था, खेलता था और अपने नस्ल के बहुत से लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी की इब्तदाई फेज़ में था। साउथ ईरान में कुछ चीज़ें सियासत से भी ज़्यादा पुरानी हैं, जैसे साथ साथ रहना। इस बच्चे की माँ शिया और बाप सुन्नी था और एक घर जो सालों से बिना कोई बाउंड्रीज के जी रहा था, और अब एक बेटे की कमी, उसका गम, सबको एक साथ पूरे घर को झिंझोड़ रहा है।
1: इसराइल ने जो हमला किया था पहला, उसके अंदर ये शहीद हो गए थे। कह रहे थे कि इंडिया में जो फिल्म्स होती हैं वो इनको पसंद थी और सलमान खान को ये पसंद करते थे। आप जानते हैं कि ईरान में जो फिल्म्स लगाई जाती हैं, जो यहाँ के टीवी पे लगाई जाती हैं, वो सेंसर करके लगाई जाती हैं, तो उसमें जो बुरे सीन्स होते हैं वो काट दिए जाते हैं और उसके बाद वो फिल्म भी चल जाती है। तो ये कह रही हैं कि सलमान खान को एज एन एक्टर वो पसंद करते थे।
0: हर लम्हा कोई नई चीज़ हो रही थी। कोई कह रहा था कि वॉर हो जाएगा, कोई कह रहा था ईरान जवाब का इंतज़ार कर रहा है। हम जहाँ थे टेंशन वॉर का बहुत ज़्यादा था, हमें किश्म की तरफ जाना था, लेकिन जब सुना किश्म पर हमला होने वाला है तब हमने अपना रास्ता बदल दिया और हम हुरमुज की तरफ निकल गए। हुरमुज इन दिनों सिर्फ एक जजीरा नहीं था, पूरी दुनिया की न्यूज़ का सेंट्रल पॉइंट था और पूरे इलाके का इंतज़ार था कि हुरमुज में क्या होने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह थी जहां हम जा रहे हैं।
2: ये जो हम लोग इस वक्त खड़े हैं ये हुरमुज है, जैसा मैंने आपको बताया वो ब्लू डॉट जो है हुरमुज का है। और यहां पर आप देखें कुछ कश्तियां हैं जो ऑलरेडी इन कश्तियों को रोका गया है और ये कश्तियां यहां से जब तक, एक आइलैंड है और वो अभी फिलहाल क्योंकि वॉर सिचुएशन है इसके लिए उस रास्ते को और वहां तक को बंद किया गया है। और ये पहाड़ के पीछे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दुबई मिलेगा और ये वही एरिया है ओमान और ईरान के बीच का जो वाटरवे है जिसे स्ट्रेट ऑफ हुरमुज कहते हैं वो यही है। कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत है ये पहाड़ जो है, कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर पूरा रेड वाटर होता है, यानी बहुत ही खूबसूरत जगह है। लोग आते हैं यहाँ पर और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर भी करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बच्चे आ रहे हैं फिशिंग करने के लिए। तो यानी जंग का माहौल ऐसा लग रहा है, हुरमुज है जंग का माहौल होगा, लेकिन आप देखेंगे तो जिंदगी नॉर्मल है क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है तो दुकानें बंद है, लेकिन बाइक्स देखेंगे आप चल रही है। ये बच्चे लोग यहाँ पर जमा है, बच्चे लोग जो है फिशिंग करने के लिए आए हैं और ये बच्चों ने ये माही निशुन भी दी बच्चे सर हम माही निशुन भी दी माही गिरफ्ती तुम चीजी फिर मैंने चजुर की। ये इन लोग जो दिखा रहे हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी हैं इसी समंदर से हुरमुज के अंदर, ये बच्चे जो यहाँ पर आए हैं और इन लोग जो हैं मछलियाँ यहाँ पकड़ रहे हैं। तो हम लोग एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे मैं क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सुबह से आ गया हूँ, दोपहर से तकरीबन मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है हुरमुज में। ऐसा लगता नहीं है कि जंग हो रही है या जंग की कोई बात है, जबकि अमेरिका ने बहुत थ्रेट किया है उसके बावजूद हुरमुज के लोग जो है यहाँ से छोड़ के जा नहीं रहे हैं। अगर इंजन ये अगर आप देखेंगे तो देखें बाइक्स चल रही हैं अभी, जैसा मैंने कहा दोपहर का वक्त है तो यहाँ पर जो है ईरान में गर्मी ज़्यादा होती है तो दोपहर को 2 से 5 जो है सब चीज़ें बंद होती हैं, लोग घर पे जाते हैं, तो ये दोपहर का वक्त है।
0: आज की खबरों से बहुत पहले, कश्तियों और सैंक्शन से भी पहले, इन पानियों ने और भी कुव्वतें देखी हैं। पुर्चुगीज सालों तक यहाँ खड़े रहे खलीज फ़ारस के दिल में, जहाँ हमेशा दुनिया के लिए अहमियत रही थी। यहाँ की मट्टी इस्तेकामत की याद भी रखती है, किले रह जाते हैं, कुव्वतें बदल जाती हैं, मगर ये पानी आज भी वही पानी है। और यहाँ के लोग सालों से सीख चुके हैं कि धमकियों के साए में कैसे जिया जाए बगैर अपनी जिम्मेदारी को छोड़े।
3: सालन शाल असर शायद उसका हरी मिले।

0: जब हमने बंदर अब्बास वापस जाने का फैसला किया, वक्त पहले जैसा नहीं चल रहा था। सब कुछ तेज़ हो गया, खबरें, बातें, और वो रास्ते जिनसे गुजरना था। लाफ्त में समंदर और रोड के दरमियान हम ऐसे सफ़र पर निकल पड़े जो पुरसकून नहीं था। यहाँ सफ़र सिर्फ मूवमेंट नहीं होता, यहाँ हर रास्ता खुद कहानी का हिस्सा होता है।
1: रहमान रहीम, हम लोग इस वक्त बंदर अब्बास आए हैं और बंदर अब्बास में यहाँ साहिल है, समंदर का किनारा है, और ये समंदर के किनारे में आप देख सकते हैं कि उस तरफ हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और अभी मुझे बात करनी है फारसी में। मैं